0: अपविश्वासकर नीरा हस्त प्रकाश करम।
1: स्वामी भगवान से कुतु से स्वामी भगवान से उतानु से स्वामिनी भगवान से नवत वडिन सेक
0: तेहिन प्यानी उन्वांसिगे मरण्यात उत्तान्यात सीपत कर्मिन जीवन दायक भूप्यात गैलवी मदायक कुशलाना तपय बट पुद करम ओ बहम सिटमिन ओबट सेवे खरानट अप सुदुसान वचिन सल की मगन अपय बट तुति पुदम क्रिस्तुन महांसिगे श्री सर रेटा श्री रुधि रेटा सहभागिवन अप सम शुद्धात्मन विशिन सत्कर्मु लबन लिस अपी अवनतवा आयद सिटिमु स्वामिनी मुल्लु पेतर पवत्ना सुधो सभाव सीकल मैनव फ्रांसिस नमति अप शुद्धोत्तम प्यानंद मेलकम रंजित नमति अप अगराद गुरु तुमंद सकल पूजक पिरिसद समगेम सभाव दयागुणेन पिरिपुन वन्नट सलसुन मैनव उत्तानी बलापुरुत तैतुव मीगी अपगे सहोदर सहोदर यंद उबगे दयानुकम पावकरे विश्वासे तब नेश्वान कुत्स्यालंद सीकर उबगे श्रीवत मंडले आलोके वेतट उन खेंदवागत मैनव अपस्यालंट दयानुकम पाकल मैनव भाग्यवत देमातावन कन्यमर्यावंद भाग्यवत अपोस्तुल वरुंद एक एक कालयन उबगे कमत्ते टुकल सिलु शुद्धवंते इंद समग अपिदु सदा जीवनेट सहभागी वीमट सुदुसन कल मैनव तवद उन्हा समग उबट प्रशांत साकिरीमटद उबगे महिमे वर्णा किरीमटद उबगे पुत्र येसुस क्रिस्तुन वहांसे मगिन अपट वरम दुन मैनव उन्वहांसे मगिन्द उन्वहांसे समगद उन्वहांसे करेद सियलु बलते देवी प्याननी शुद्धात्मनन हा समगे क्वडवासन्ना वू उब वहांसेट सकल गौरवयात महिमे

याज्ञा करम है सर्व बलदारियो अनाति अनंतो दिव्येनी मोक्षांपन मातावन कान्यमारिय तुमांगे गतहा प्राणय ओबिगे श्री कुमारे अटोबिन वासस्थानयक वनलेस इस्प्रीतु सांतु अरमीन हेतु युक्त करदी वदाला वेद अपसतु सिहिकरनो तुमियगे दयाबरे आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरुवलिन्हा अनवर्त मरनेन गलवीम सलसो मनव मेकी दे अपगे स्वामियो जेसु क्रिसु सुहांसे उदिसाम अपटले बेवा आमेन।